0: हेला नशाला हेला नशाला।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

मी देहास बिही बनाहरु जर्मन गे डीजे डुआ वाइज कजाकिस्तान गे डीजे इमान बेका एको मी लवागे कव वर्षन के कुत करने फवालावा मी लवागे कोरिस पैत किया दिफमनी लियोनी

0: साथी मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गार्ड दिवे ही एफएम दिवे ही नायक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: हिमेन इउतिराफ
3: बुनन नुकरीफावा वाहक तक मुलुवाले वे दोरे

के उभरने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं।

मेरे के शो निम्मा लावा को तुम्हें जोनी उम्मीद में करें शो के तेरे में गेनस्त हूँ लावा तक कि हूँ तेरे ना कम दे कम लावा तक कम लाव फीता मिस प्रोग्राम को मैं अंगार दो है केरे और मैं गेनस्ते अगर फाइनल टाइम फिश के हम अनुगर तेरी हाई साब शो करिए गेंदार शो का बैवेरी वेला मासे के तफुर हम कोल दा रीत लावा तक आडो हम के फुर्सत और मैं मिदे नहीं दे मी शो का बैवेरी वां मी फुर्सत उड़ वाले उस मेरे सम मी बैवेरी हम के फुर्सत वर बड़ा लावा तक रिक्वेस्ट कोल दा मी रे लिब फदे मी तनु लावा तक सीधा जहाल नुदे उन कम गे शो मी शो के गेनस्ते लावा तक कि हूँ तेरे ना कम दे लावा तक कम शो ಮಿದ್ಮಿ ಕೊರೇನಿ ವರ ಉಫಾಯರ್ ವಗತ್ ಕೊಳಕಂಗೆ ಮಿಗಡಿಯ ವಾಕ್ಯ ಅಸ್ಲಾಮ ಅಲೈಕುಂ.

मिला वैन रोज़े वे के गोस फवानी बिलबोर्ड हॉट 100 के गोल्डन टॉप 10 न वदे बुन एमे फुरतमा अंगहें केपॉप सोलो फन्नाना नेरुन तामादु दुस कोले के तेरे का यूट्यूब का साते का मिलियन वरे कीन व्यूज दिबी टिकटॉक का इंस्टाग्राम रील्स का एमे गाते वायरल वी एक ट्रेक वेगेंदिया

जाने किसकी तलाश उनकी आंखों में थी, आरजू के मुसाफिर भटकते रहे। जितने भी वो चले उतने ही बिछ गए राह में फासले। ख्वाब मंजिल थे और मंजिलें ख्वाब थीं, रास्तों से निकलते रहे रास्ते, जाने किस वास्ते आरजू के मुसाफिर

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।